लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।

0: system, but it's love for money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: साज दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: इन द वे टू स्टार्ट दिस इज द मैन इन द हाउस कम ऑन ऑल द

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

0: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।
1: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।

0: कहते हैं आ जाएगा। दूसरे ने ये लाए हैं कि फुलवास जो है ना वो 25% से 12.5% की जाएंगी, और मतलब कि वही किस्म की स्वीडन और नार की जो नॉर्मल प्राइस है उस पर लाई जाएंगी, और फ्रूट जो है ना वो पूरा फ्री किया जाएगा। ये था रेड ब्लॉक की तरफ से, जो रेड ब्लॉक के कह रहे SF हो गया, हम सोशल
1: अदनान, ये
0: डेमोक्रेट हो
1: जो
0: गए।
1: आप बात बता रहे हैं, ये तो खैर जो को खाने पीने की चीज़ों पर मिलेगा, छूट मिलेगी। जो अभी जो इससे पहले आपको पता है कि रेडिकल वेंस्टा के जो वज़ीर बने थे मानुषरीन, जो कि गालबन 3 अक्टूबर 2011 को वज़ीर बने थे, और अब जून को जो है, 3 जून को जो है ये समैरा नोवा बनी है, वज़ीर बनी है, जो मौलियात की बनी है। तो आप दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं? वो अपना बैकग्राउंड तो उनकी, वो पंजाब से पंजाबी थे, वो इंडिया पंजाब से, तो समैरा जो है वो अफगानिस्तान से उसके वालदैन आए थे, क्योंकि वो खुद यहाँ पैदा हुई हैं। तो दोनों इसी पार्टी में वजीर बने हैं, तो आप बताएं कि मानुषरीन ने कोई काम किया था और ये भी कोई काम करेंगी?
0: सब मैं एक बात कहूंगा कि शमीया पर मुझे थोड़ी उम्मीद है कि ये काम करेगी, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से ना जब से ये हुकूमत बनी है ना, इसके साथ मुझे नहीं पता गाड़ी खैर में जुहेर और ये सारे बैठे हुए हैं, उनको शायद दूसरा इसका विंकल का पता हो। मेरा जो इसके साथ तजुर्बा हुआ, जो मैंने चीजें देखी हैं इसके बारे में, ये है कि जिस चीज पे काम करना चाहती है ना उस पर ये काम कर लेती है और करती भी है। और इसका एक और बैकग्राउंड, इसका बहुत बड़ा फर्क है मानो सरीन से, ये गाड़ी खेल व्यवस्था की सारी इकोनॉमिकली पॉलिसी पे बैठी हुई है, और यही क्या कहते हैं उनकी की बंदा है, जिसने जब निगोशिएशन होगी ना किसी मिस्ट्री में भी, लैसी जब अब कमूनों की पेशी गाएगी तो ये बैठेगी साथ, मात्र लीको बैठेगा, मगर मात्र लीको को उतना नहीं इकोनॉमिली का पता जितना इसका पता है।
1: यह
0: और
1: सही।
0: इसका और ये डेफिनेटली बैठेगी। और दूसरा बात, इसका एक बहुत बड़ा स्टैंड है, शायद आप लोगों को मालूम हो कि इसके ऊपर एक एलिगेशन लगाया था, एक नैना लड़की है वो 25, जिसका सारा पटाखा बज गया हुआ है, उसने इसको कहा था कि बंदे का जो मर्जी बैकग्राउंड हो वो बंदा चेंज नहीं कर सकता। मतलब कि इसको ये कहा गया था, जो घोड़ा होता है ना वो घोड़ा ही होता है, और जो कुत्ता होता है वो कुत्ता ही होता है। और मैं आपको कहूं कि जिस तरह से इसने जवाब दिया था ना, और मैंने भी उस पर जवाब दिया था, मैं आज मुझे बड़ा सुनना पड़ा था उस वक्त कि मैंने गाड़ी खैर में इसका कोई जवाब नहीं था, उनकी मैथ में ही था दिया, मैं रिपीट कर लूं, मैंने इसलिए दिया था कि ये बात गलत है, आप किसी की नस्ल पे ना जाए, मेरी रिक्वेस्ट होती है। डेफिनेटली आप जानवर और इंसान को क्या कहते हैं इकट्ठा नहीं कर सकते। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितने दिन या जाती रही है ना माचलिको के साथ, और डिखेर वेसन ने जितनी चीजें अपनी लाई है ना उसके अंदर इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और आप एक चीज देखें, सबसे बड़ी बात जो है, जो आपने शायद देखा भी हो किसी पार्टी के अंदर, नहीं ये आए भी इकट्ठे हैं गए भी इकट्ठे हैं, ये देखें कि कितनी अच्छी बात है कि वो इकट्ठे आते थे इकट्ठे जाते थे, क्योंकि नजर आता था ये एक टीम है। और ये बात मुझे माचलिको की बड़ी पसंद आई है, इसने अपनी पूरी टीम है। और कल आपको मैं बात बताऊं, जब ये आए हैं मिनिस्ट्री के अंदर प्राइम मिनिस्टर से जाने वक्त, ये तीनों इकट्ठे आए हैं, क्योंकि इनके अंदर एक सलूक है, ये माचलिको और सिमिया का बहुत अच्छा सलूक है आपस में, ये चाहे तो काम कर सकती है, और हम इसको सपोर्ट करें ना एज ए कम्युनिटी, और ये काम करेगी मुझे पता है, इसकी पार्टी
1: ये
0: के
1: हम
0: अंदर
1: बुलाएंगे
0: इसको।
1: इसको इसको बुलाएंगे अदनान। ये बिल्कुल यंग आई थी, और इसने देखे इस वक्त हमारे बड़े बड़े ऊंचे नाम थे, नदीम फरूक था, अपना अब्बास रिजवी थे, सब कुछ रेडिकल वंशा में, मैं भी था, लेकिन ये बिल्कुल नई आई थी और इसने सबसे पहले जो काम किया वो ऑफिस का काम शुरू किया रेडिकल रेंसा के अंदर, और ये उस वक्त विकास के ऊपर काम कर रही थी, और इसने वहां पे सारी सारी रात बैठ के तो इसने काम किया, और साथ ये अपनी एजुकेशन भी दे रही थी। तो इसने जो मेहनत की है, इसने बहुत पुराने लोगों को पीछे छोड़ के रेडिकल रेंसा में, और इससे अपना एक मकाम बनाया। तो मैं आप लोगों को, जितने भी यंगस्टर्स हैं, इनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये मेहनत होती है जो रंग लाती है, और हमें इस बात की सबसे बड़ी खुशी है कि जो भी है, पहले जो मुसलमान नाम आया एज ए मिनिस्टर, पिछली दफा भी हो जाना था मीनू सरीन की जगह, लेकिन वो

0: जो वजूहात बनी उसका मुझे पूरा इल्म है, वो इस वक्त अब पुरानी बात है, उसको ओपन करनी अच्छी बात नहीं। लेकिन ये उम्मीद है और मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, देखे जितने भी बातें इलेक्शन में की गई थी, उनका सिर्फ 12% जो है, जो मैं देख रहा हूं या जो तजिया नगार देख रहे हैं, वो 12% जो है एप्लीमेंट होंगी। ये जो सब्जियां वगैरह फ्रूट वगैरह जैसे आपने बात किया, ये तो अगले महीने से ही शुरू हो जाएगी, और लोगों की हेल्प भी जो है मेडिसिन की आगे पीछे, वो भी इसके ऊपर सोशल डेमोक्रेट जो है वो थोड़ा सा काम करेगी, क्योंकि सोशल डेमोक्रेट्स ने अपने पांव जो जमीन पे रखे थे, वो जलजला जो आया था पिछले पीछे, वो उसकी वजह से वो थोड़ी सी कांपी है, और अब उसको चाहिए कि वो बाजमात दोबारा वापस आए। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि हमारे कम्यूनों के अंदर इस वक्त ये सुना जा रहा है कि इनके पास बजट नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, और अगर इनके पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है, तो ये जो नई बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं, ये जो सरमाया बिल्डिंग्स के अंदर लगाया जा रहा है या रोड वर्क्स के अंदर लगाया जा रहा है, अभी आपको पता है कि इस दफा जो एल्बस रोड की एक अखबार है, उससे आपके आपके पास भी वो कटिंग है, आपने बात मुझसे की थी उसके ऊपर, कुछ स्कूल के बारे में भी उन्होंने बात की थी, तो क्या आप जरा ये मंजरे आम पर आ सकते हैं कि भाई हमारी कम्यूनों में जो लोग इलेक्ट हो चुके हैं, वो आम आदमी को ये जो कानून बन रहे हैं या जिसके ऊपर वो बैठे हैं, कौन कौन सी उन्होंने अपना मतलब कौन कौन से वो जो है उन्होंने पोस्टें ली हैं, यानी कि आप हैरान होंगे कि मैं कल कम्यून के अंदर गया तो मैंने वहां पूछा कि मैं बॉम्ब मिनिस्टर से बात करना चाहता हूँ, तो कहते हैं जी आप यहाँ नाम रखा जी, हम आपको कहेंगे। मैंने कहा उसका डायरेक्ट टेलीफोन नंबर उसकी अच्छा, तो वो कहने लगे जी वो तो उसका तो डायरेक्ट टेलीफोन नंबर ही नहीं है। तो ये मुझे हैरान हुई है, इस पे आप बात करें, तो ये बताएं लोगों को
1: मैं एक
0: इन्फॉर्मेशन
1: बात
0: क्या करें।
1: राजू साहब, मैं एक मिनट बात करता हूँ, मैं आपको एक चीज बता दूं। अब ये जो हरिकेन वेंसा की समीये की हम बात कर रहे थे, क्योंकि मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ये इसकी मैं एक आपको इसकी क्वालिटी बता देता हूँ जो मुझे इसकी पसंद आई थी, मैं आपको बताता हूँ। मेरी इसके साथ ना नवंबर में, जब मैं इसकी नवंबर और ये अभी मेरी इसके साथ जब इलेक्शन हो रहा था ना, तो ये एक जगह पे आई हुई थी और वहां पे हम लोग भी थे अपने कैंडिडेटों के साथ, और इसकी बहुत अच्छी बात थी और हमारी बातचीत चल रही थी। तो मैंने इसे, मैं उधर खड़ा था, मैं दूसरी साइड पर खड़ा था, मुझे ही तो पता ही आई हुई है, क्योंकि इसको पता था कि मैं अपनी टीम के साथ आया हूँ और मैं उनका टीम का हिस्सा हूँ और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और मैंने इससे एक सवाल किया, मैंने कहा देखो, मैंने कहा कि ये देख ये जो चीजें चल रही हैं बड़ा मुश्किल हालात है। तो इसने मुझे वही आपकी बात है, जब आप जो टीम की तरफ आपके सवाल की तरफ आते हैं, तो यही मुझे इसने कहा, कहती है मसला ये हो जाता है कि हम लोग जब इलेक्ट हो जाते हैं ना कम्यूनों के अंदर और हमारे रेस्पेक्टेंट चले जाते हैं, तो बहुत ज्यादा को ये नहीं मालूम होता कि जो सिस्टम्स हैं वो कैसे चलने होते हैं और कैसे चलने होते हैं। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको शायद सब बता दूं, हम अभी एपिसोड में बैठे हुए हैं और हमारे जो आपकी बात सही है, बिल्डिंग बन रही है, बहुत कुछ बन रहा है, और यही एक फैसला होता है और इसका होता है। पिछले साल 2025 का जो बजट हमने बनाया था ना, और जो जिसके बारे में था, वो हमें फूलियां ना मिलती है जो होती हैं लेंस कम्यूनल्स लेंस वाइनिंग से, तो हमारा बजट पूरा नहीं था ना। और मैं आपको यही कहूं कि अब इनकी जो कोशिश है कि यही लोग बड़ा सवाल कर रहे हैं कि हर जगह बिल्डिंग बन रही है, हर जगह ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं, हर जगह क्या कहते हैं सड़कें खुली हुई हैं, पता नहीं बंदा जा रहा एक जगह आता है तो पता चलता है ये बंद है, ये इनकी ये पता नहीं ये भी पॉलिसी है और क्यों है ये मुझे नहीं पता। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 2000 अभी तक तो हमें यही पता है कि 2027 के जो बजट्स हैं वो बेस्ट आए कि कम्यूनों के, अभी तक तो क्या कह रहे हैं कि कोई इतना बड़ा मिसाल नजर नहीं आ रहा, मगर अब ये क्या कहते हैं ये जब गवर्नमेंट बैठेगी और कम्यूनल ने स्लेंस फाइनिंग और वैक्यूम्स के बजट बनाएगी, तो फिर ही क्या कहते हैं हमें हमें पता चलेगा कि कि कितने पैसे हैं डब्बे में और कितने पैसे नहीं है और कितना क्या कहते हैं कमूनों के अंदर चेंजेस आते हैं,
2: असल
1: क्योंकि
2: बात तो अदनान जो है वो डब्बे में कितने पैसे वाली बात है। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, जो 2022 से शामस डैनियल निल्सन जो है वो वजीर थे, लेकिन अब जो सीना मुंक जो बने, लेकिन ऑन द होल वजारत अब भी जो है वो शामस के ही पास है। लेकिन अब कोपेनहेगन पूरा इधर बंद हुआ, वेस्टरबो इस तरफ जो है लोगों ने जो मेला लगा हुआ जो भी लगा हुआ है, तो आप अंदाज़ा करें कि लोगों के पास जगह नहीं है कि गाड़ी वो कहाँ पार्क करें, परेशानी में घूम रहे हैं। इस परेशानी का किसी को अंदाज़ा है?
1: दादा साहब देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि ये जो कोपेनहेगन का क्वेश्चंस है ना, मैंने ना एक मैंने बड़े अरसे से मैं खुद फंसा हूँ एक दिन तो मैं खुद फंसा हूँ एक दिन तो मैं खुद हैरान हुआ हूँ। तो फिर मैंने वो जो हमारा बैठा हुआ है सोशल डेमोक्रेट को, मैंने उसे लिखा, मैंने कहा मैं तो समझता था कि ये आप लोगों ने कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। कहते हैं हम नए बैठे हुए हैं, अब कोशिश कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या बनता है। मैंने कहा ये तो नहीं ना कि क्या देख लें, मैंने कहा लोगों की मुसीबतें के लिए हम आप लोग इलेक्ट हुए हो, कोई ना कोई तो हाल निकाल लो। तो कहता है ये मसला ये हुआ है कि हमने ये सोचा था कि हमने कम पार्किंग करनी है तो लोग ज्यादा बसों में और ज्यादा क्या कहते हैं ट्रेनों में घुसेंगे और ये चीजें घुसेंगे। तो मैंने उसे ये कहा, मैंने कहा जितनी देर तक वो चीज तो आपकी सही है कि आप गाड़ियां कम करना चाहते हैं, आप ये मगर कोई ना कोई तो आप सोल्यूशन निकाल लेना। और ये एक मसला है कोपेनहेगन के अंदर, काफी मसला है, और मैं होप करूंगा कि वहां पे जो जितने कैंडिडेट बैठे हुए हैं, सिकंदर
2: नहीं,
1: भाई
2: आप
1: हो,
2: ट्रांसपोर्ट के
1: कासम
2: वजीर से भी तो बात करें ना। असल मसला तो ट्रांसपोर्ट के वजीर हैं जो ना, वजारतें ले लेते हैं तो इनको पता नहीं होता ट्रांसपोर्ट किस तरह चल रही है।
1: साहब, प्रॉब्लम ये होती है कि जो नेशनल है ना वो तो नेशनल का देखते हैं ना, लोकल जो होता है वो कमून के हवाले में होता है, वो कमून ने खुद क्या कहती हैं उसके सोल्यूशन ढूंढने होते हैं। और जब जितनी देर तक कमून ही सोल्यूशन नहीं ढूंढेगी उतनी देर तक क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स पड़ती हैं, और फिर प्रॉब्लम्स जो होती है ना बड़ बड़ी होती हैं। कोपेनहेगन में मसला ये है कि कोपेनहेगन के अंदर एक पार्टी है, आपको भी पता है वो इंग्लिश लिस्ट वाले हैं, उनकी तो यही कोशिश है ना कि सब साइकिलों पे बसों में ट्रेनों में ये घुसे, और वो मेजोरिटी पार्टी है जिसके पास सबसे तो ज्यादा क्या कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग आई थी पिछले इलेक्शन में भी, 2025 में भी, 2021 में भी बड़ा स्ट्रॉन्ग आए थे वो। तो उनको जरा कन्विंस करना थोड़ा क्या कहते हैं होता है। मेरे ख्याल से अब शायद उनकी पॉलिसी थोड़ी बदलेगी, ये हमें लग रहा है कि वो अपनी क्या कहते हैं वेयर अपनी नेशनल पार्टी को देख के उस तरह से थोड़ा चलेंगे, क्योंकि जिस तरह से वो उनने ये क्या कहते हैं नेशनल लेवल पे हैंडल किया ये नेगोशिएशन और चीजें लाए हैं तो उस तरह से उनको करना पड़ेगा। कोपेनहेगन में तो ये भी तो सोच रहे हैं ना कि अंडरग्राउंड को पार्किंग बनाई जाए तो क्या कहते हैं कुछ कुछ सोल्यूशन है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कोपेनहेगन के इतना देखा नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। मैंने वेस्टाइन को ही देखा है क्योंकि वेस्टाइन के ऊपर मेरा क्वेश्चन हुआ था जब मैं ये कुछ दफा ब्रॉनबी में मैंने देखा मैचों पे और ग्लोव तो कुछ देखा और मैंने पेबिनसलोन में देखा, तो मैंने जब वहां पे आवाज उठाई तो मुझे पता चला कि कोई कोई प्लान इन्हें बनाए हुए हैं जो बाहर निकालेंगे कोपेनहेगन का। मैंने इसलिए मैं माज अच्छा तो मैंने उनका कोई प्लान नहीं देखा, मैंने आप लोगों ने मुझसे कहा था तो मैंने एक लिखा था कि आपने बंदे को, उसने मुझे यही कहा कि हम इस पे काम कर रहे हैं और हम जब हम पता चलेगा कि मॉडल सिचुएशन कैसे
2: ज़रा यहाँ सिस्टम
1: है।
2: से काम होता था। अदनान आपने आगे जिक्र किया कि स्मैरा जो है वो रेडिकल मिनिस्टर की ओलो ले लिया, उन्होंने जो है अपनी पार्लियामेंट की सीट जो है फिलहाल उन्होंने छोड़ी हुई है, वजारत रखी हुई है, लेकिन उनकी जगह कौन बैठा है?
1: उनकी जगह बैठेगा फर्स्ट सुप्लेंट जो उसका उसकी पार्टी का वो बैठेगा, वो इतनी देर तक उसने ये इसलिए। और राजा साहब ये आइडिया भी बहुत अच्छा है क्योंकि इससे उनको ये होगा कि उनकी जो ग्रुपिंग है ना ग्रुप जो उनके मेंबर्स हैं वो फिर जरा पार्लियामेंट के अंदर उन पर प्रेशर नहीं इतना पड़ेगा। 10 सीटें जी मेरे ख्याल से उनके पास, अब वो आए थे अंदर नंबर 10 सीटें थी, तो इस तरह से उन पर क्या कहते हैं फिर उनके जो तो काम का लोड होगा ना दूसरों पर इतना नहीं पड़ेगा। तो ऑब्वियसली वो क्या कहते हैं उनका आइडिया अच्छा है, और एक मोटी क्या कहते हैं एग्जाम्पल होती है कि बंदा बंदे को लालच नहीं होता। आप देखिए ना कि कल मैं आपको एक बात बताऊं व्यूअर्स को, जो जो यहाँ का फर्क है, हमारा जो फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर था मचिया चेस्पाय, जब वो अपना ओहदा दे के छोड़ के आया उधर बादशाह के पास तो वो पैदल चल के गया अपने ऑफिस वापस, और पैदल चल के जब गया ऑफिस तो लोगों ने उससे सवाल पूछा कि तुम पैदल क्यों जा रहे हो। तो उसने एक जर्नलिस्ट को कहा, उसने कहा मैं आपको एक और सरप्राइज दूंगा, सुबह आपको बान की बात होगी कि वो आज सुबह ट्रेन से गया था अपने पार्लियामेंट में, वो ट्रेन में बैठ के गया गाड़ी
2: इसलिए कि उसको गाड़ी
1: के
2: पे जाए
1: अंदर।
2: तो उसको पार्किंग नहीं मिलती।
1: नहीं, पार्किंग की वजह से नहीं गया वो, पार्किंग तो उसको मिल जानी है क्योंकि वो तो उनकी अंडरग्राउंड पार्किंग के अंदर पार्लियामेंट के अंदर। वो कहता है मैं क्यों जाऊं, कहता है मुझे शौक है आम बंदे रहने का, और उसने वजारत भी इसलिए छोड़ी है कि वो अपना क्या कहते हैं वो लोकल काम करना चाहता है। वो कहता है जब मैं एक मिनिस्ट्री में बैठूंगा तो मैं खाली एक मिनिस्ट्री का काम करूंगा, जब मैं कोपे फॉर्म में बनूंगा तो मैं ज्यादा चीजों का काम कर सकूंगा और मैं ज्यादा चीजों को समझ सकूंगा और
2: तो
1: ज्यादा
2: चलिए
1: मिसालों को
2: अदनान
1: क्या
2: आते हैं,
1: करूंगा।
2: शाह साहब भी सुन रहे हैं, आपसे सवाल करेंगे। तो एक जो समेरा बनी है वो बैकग्राउंड के हवाले से मिनिस्टर बन गई है, मेहनत की है, सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी हमारी कम्युनिटी है 40,000 है या उससे ऊपर है, तो एक मेंबर भी पार्लियामेंट नहीं बनवा सके।
1: यार सब देखे नहीं, पार्लियामेंट जो मेंबर है ना, देखा जाए टेक्निकली देखा जाए ना तो एब्रिस्लोन का जो एब्रिस्लोन से बंदा निकल गया है, रहता मचियस यहाँ का ही है। मसला ये था कि यहाँ पे जो कैंडिडेट थे ना वो 6-7 खड़े हो जाते हैं, एक आम होती है, एक जजीरा बना होता है। जो मेन कैंडिडेट था ना हमारा यहाँ सोशल डेमोक्रेट का, वो नहीं निकल सका। जो गाड़ीखेर मिनिस्टर लाए थे वो जुहेर लाए थे, वो भी नहीं निकल सका। बीवी लाए थे एब्रिस्लोन से, वो भी नहीं निकल सकी। अभी इस चीज की समझ खुद नहीं आई कि क्या कहते हैं कि इतने कैंडिडेट थे, दो हमारे एब्रिस्लोन से कैंडिडेट खड़े हुए हैं, एक जुहेर खड़ा हुआ था, एक बीवी खड़ी हुई थी, वो दोनों नहीं आ सके एब्रिस्लोन से। क्यों नहीं आ
0: नहीं
1: सके?
0: अदनान, इसमें ये वजह होती है कि ये जब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ना हम लोग पार्टी के, कि भाई फलानी पार्टी के साथ हम सामा बात करेंगे, मसलन सोशल अपना रेडिकल ने सोशल डेमोक्रेट और दूसरों के साथ मिलके तो ये अपने बनाए हुए थे, तो फिर ये कहते हैं कि मंडेट जो होती है ना, अगर इनकी दो मंडेट पिछली दफा बनी थी तो इस दफा एक मंडेट, ये इनको इलेक्शन से पहले बात करनी चाहिए थी। असूली तौर पे डेमोक्रेसी इसको कहते हैं। इन्होंने इन्होंने वो मंडेट यहाँ की जो सीरत सेकंड मंडेट उसको दूसरे इलाके में तब्दील कर लिया और यहाँ से वो मंडेट जो है वो दूसरी पार्टी को मिल गई। ये चीजें जो है ना, ये सियासत में ऐसे ऐसी गेम प्ले वैसी होती है, क्योंकि ये जो सियासत है इसको मैं पीडीएम का नाम इसलिए दे रहा हूँ कि ये उस तरह की फेयर सियासत नहीं है जिस तरह की 2000 से पहले डेनमार्क में होती थी। यहाँ पे लोग जो थे बड़े बड़े लोग थे, बड़ी बड़ी उम्र के लोग थे और उनके पास तजर्बा था, उनके पास हर एक चीज। आज क्या है, आज लोगों के पास आईपैड है, कंप्यूटर है, तो उनके पास आप जाए। अभी आप ये बात कर रहे थे सुमेरा की, इसने बहुत अच्छी बात की है, इसलिए कि ये अपनी जॉब को जो मिनिस्ट्रीज को मिली है उसको बेहतर तरीके से समझ सकेगी, उसको बेहतर तरीके से टाइम दे सकेगी। पार्लियामेंट में तो वो पहले ही बैठी हुई थी, पार्लियामेंट को वो समझती थी, गुण लॉ को वो समझती थी, हर चीज को समझती थी। हमारे जो लोग हैं, हम लोग हमेशा उस जगह से इलेक्ट होने की कोशिश करते हैं जहां हमारे अपने लोग हैं। हम दूसरी नेशन से जो है वो वोट लेना अपनी तोहीन समझते हैं। और अगर ये पहले ही जो पार्टियों में लोग जाते हैं ये पहले ही समझ लें कि मेरे लिए कौन सा इलाका अच्छा है, तो ये उनको वहां से पार्टी जो है वो मैंडेट दे के आगे ला सकती है।
2: अदनान, इसमें अगर आप वजाहत कर दें, साथ
1: अच्छा
2: साथ साथ ये भी बता दें कि ये जो दो दो सीटें हम रख के बैठ जाते हैं, हमारा एक सीट पे हम काम नहीं करते, दो दो सीटें भी रख लेते हैं, फिर हमारे पास टाइम भी नहीं होता, मसरूफियात भी होती हैं, क्या हमारा सिर्फ ज़ाती जो चक्कर होता है मेंबर बनना, पार्लियामेंट का मेंबर बनना, कम्यून का मेंबर बनना, इसी तरह सियासत हम पाकिस्तानी सियासी पार्टियों की करते हैं तो डिमांड हम जो है डेंशों से करते हैं।
1: साहब देखिए, जो शाह साहब ने बात की है, शाह साहब ने एक बात सही की है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरा ये जो हम दो दो डे रहना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि ये मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस वक्त जो शेरन पे बैठे हुए हैं ना, उनको ये भी सोचना चाहिए कि पहले जो था ना चेयरमैन, वो दो हिस्से में होती थी रेक्यून, अब वो एक रेक्यून में होगी, तो आप पे काम भी बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा और आप लोकल काउंसलर भी होंगे तो आपको ये मैनेज करना पड़ेगा कि ये हो सकता है कि सेम दिन दोनों तरफ मीटिंग आ जाए, तो फिर आपको प्रायोरिटी करनी पड़ जाती है कि कौन सी मीटिंग आप में जाएंगे और कौन सी मीटिंग में आप नहीं जाएंगे। तो सर इसलिए ये भी बहुत बंदे को क्या कहते हैं देखना होता है कि बंदे के पास किस तरह से बंदे ने करना है। या तो आप ये कर लें कि पहले आप कह लें ठीक है मैं 4 साल, ये मेरी राय है कि बंदा एक काउंसलर बन जाए, उसके बाद बंदा दूसरी देख लेता है, मगर ये अपनी अपनी पर्सनल राय है। बात ये होती है कि जिस तरह से ये हम बात कर रहे हैं कि ये जिस पहला मुसलमान जो हमारी कैंडिडेट बनी है, आप इसका बैकग्राउंड जाके देखिए ना कि इसने किस तरह से ये तजुबा लेके गए। शाह साहब की बात सही है कि इसने ग्राउंड वर्क किया है इसका, ये जब पहले पार्लियामेंट आने से पहले इसने ना जो फुल मेटी जॉब होती है ना वो इसने 3-4 मिनिस्ट्री में भी की हुई, तो इसको अंदाजा है कि अंदर से काम कैसे है और बंदे ने काम कैसे नहीं करना। जब हमारे से इसकी बात हुई थी, मैं आपको आप बात कर देता हूँ, ओपन हमारी बात हो रही थी तुम्हारे लिए पे, मैंने इसे कहा, मैंने कहा तुम्हें पता है मुझे पता है कि 2 या 3 साल बाद ये जो सूरत हाल जा रही है इसका क्या है। कहती है यही तो मसला है कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो उधर ही मुझे पता चल गया था कि ये मिस्टर बनी ना, तो इसको पहले ही पता है कि कौन सी क्या कहते हैं कौन सी प्रॉब्लम है जिस पर फोकस नहीं करना। और इसके पास आप देखिए ना इसकी मिस्ट्री तो क्लाइमेट और एनर्जी और ये मिली है, और ये काफी क्या कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग मिस्ट्री है। मुझे तो शक था कि क्लाइमेट की ये माचन लेकर खुद लेगा, मगर उसने नहीं ली, उसने इसको ली है, तो ना तो उसका बैकग्राउंड होगा और उसकी दिमाग में सोच होगी। बाकी आपकी बात सही है कि बंदे को ये प्रायोरिटी करनी पड़ती है, क्योंकि मीटिंग सेम आपके पास तो मंडे से जुमेरा आती होती है की मीटिंग जुमे को तो काम ही करते हैं, तो फिर आपको प्रायोरिटी करनी पड़ती है और आपको उतना ही बोर्ड आता है कि आप जिम्मेदारी ले सकते हो तो आप कर लें, क्योंकि आप क्यों ना प्यूगो में बैठेंगे तो डेफिनेटली मीटिंग सेम दिन आ सकती हैं। ये एक एक क्या कहते हैं नेगेटिव चीज है।
2: शाह साहब, आप आखिरी सवाल भी करें और अदनान से इजाजत भी लें।
0: ये अदनान, आखिरी चीज बात यह है कि पहले तो मैं आपको मुबारक दूंगा कि आप रेडियो पे आते हैं और आपने बहुत आप बातचीत करते हैं और लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप सही गाइड कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे यंगस्टर्स में इतनी हिम्मत है कि वो आगे, क्या अभी तक किसी ने वेस्ट लाइन से या कहीं से आपसे रब्ता किया है कि जी मैं जो है आपके जो क्रिस है आपका जो हल्का है मैं उसके उसके उसमें बैठना चाहता हूँ, या मैं मेंबर बनना चाहता हूँ, या मैं आपकी पार्टी में ऑलरेडी हूँ और मैं फलके थिंक के फलके उस वेल में जाना चाहता हूँ और वहां जाके तो मैं लर्न करना चाहता हूँ जैसे कि अभी आपने कहा, और मैं भी इस पे एग्री करता हूँ कि सुमैरा ने बहुत काम किया और अपना टाइम दिया तो आज वो कामयाब हुई, क्योंकि यहाँ की जो एजेंसियां हैं वो नजर रखती हैं, ये आप और मैं इस बात पे ही नहीं है मैं, तो वो नजर रखती हैं कि कौन सा आदमी कितनी वैल्यू रखता है, कितना काम करता है, इसके पीछे अवाम कितनी है। लेकिन अगर आप इलेक्ट होकर लोगों को भूल जाए तो वो आपको माइनस कर देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आपको इलेक्ट होने में बड़ी मुश्किल आती है। तो आप ये बताएं कि क्या, और दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो हाई सार्ट का आज आया है कि वो जो 2016 में मेरे साथियों को नेशनलिटी मिली थी तो उनकी नेशनलिटी बाप और बच्चों की नेशनलिटी कैंसिल कर दी थी गवर्नमेंट ने, तो आज उनके पासपोर्ट नेशनलिटी जो है गवर्नमेंट ने हाई सार्ड ने उनको कहा कि आप अपनी नेशनलिटी एज ए डेनिश रख सकते हैं, गवर्नमेंट आपसे छीन नहीं सकती, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे?
1: सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि कुछ लोगों ने राब्ते, ये जब हम मीना बाजार किया था उसके बाद भी मुझे कुछ लोगों ने राब्ते किए और मैंने उन्हें कहा है कि मैं इंशाल्लाह ताला आप सब से राब्ते करूंगा, और मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और बाकी मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इज्जत दी, आप लोगों ने क्या कहते हैं इतना कर दिया मेरा कि मेरी तो वाइफ कहती है, मेरी फैमिली कहती है अल्लाह करता कि सर तुम 1 साल पहले होता तो सर तुम आज कौंसलर के अंदर बड़े होते थे, आप लोगों ने पता नहीं क्या मुझे बना दिया कि हर बंदे को अब मेरा पता है, जहां जाता हूँ वहां बंदा लोग के मुझे सेंटर हो ہم نے یہ آپ کی آواز سے سنا وہ سنا. میں تو اب یہ سوچتا ہوں کہ میں کسی سینٹر میں جاؤں کہ نہ جاؤں, کیونکہ وہ روک لیتے ہیں لوگ. آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ لوگوں نے پتہ نہیں کیا مجھے بنا دیے کہ لوگوں کی اتنی عزت ہوگی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے. اور یہ تو آپ لوگوں کا کہتے ہیں, آپ لوگوں کا شکریہ ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنی عزت دی اور کہ لوگ مجھے اب سنتے ہیں, مجھے گائے پوچھتے ہیں, مجھے کہتے ہیں. میں تو خود حیران ہو گیا ہوں کہ میں نے اللہ سے یہی سوچا تھا کہ بس, میں نے کہا تھا کہ میں تو مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ تو آپ لوگوں کی مہربانی ہے اور آپ لوگ کا شکریہ میرے پہ.
2: نہیں, مہربانی آپ کی, آپ ٹائم نکالتے ہیں, ٹائم پبلک کے ساتھ شیئر کرتے ہیں.
1: دیکھیں راجا صاحب, یہ تو آپ کی ہے کہ آپ لوگوں نے جو عزت دی, اور میں اس کا شکریہ ادا آپ کا کبھی بولوں گا آپ لوگوں کو, کیونکہ آپ لوگوں نے بہت عزت دی ہے. دوسری بات رہی, ہاں یانگسٹر کو میں کوشش کرتا ہوں, میری اپنی بانجا ہے, میری بیٹی ہے, وہ جہاں جاتے ہیں وہاں وہ یانگسٹر پوچھتے ہیں, تو وہ یہی میں کہتا ہوں کہ آپ کو جو گائڈ لائنس ہے, آپ لوگ, میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں, آپ لوگ آگے آ جائیں, کیونکہ آپ لوگوں کا فیوچر ہے اور آپ لوگوں نے ہی آپ چلنے. میں تو یہی کر سکتا ہوں کہ میں کروں. آپ کا دوسرا سوال ہے سپریم کورٹ کی ڈیسیشن. ہاں میں نے دیکھی ہے وہ ڈیسیشن, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ نے کہتے ہیں 1 مہینے کے اندر 2 ایسے فیصلے دیے ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس ملک میں کوئی نہ کوئی سسٹم ہے. پہلا ایک فیصلہ جیسے آپ کو پتا ہے وہ ہاتھ والا آیا تھا, اس میں بھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ غلطی ہے, اور یہ بھی ان نے کہا ہے کہ یہ بھی ان کا اچھا فیصلہ ہے. اس سے یہ ہے کہ جن لوگوں کو پاسپورٹ ملے ہوئے ہیں ان کے پاسپورٹ چھیننا بڑا مشکل ہے. اب میرا جو کیا کہتے ہیں, ابھی تو میں نے دیکھا نہیں ہے کچھ,
0: یہی میں آپ کو روکوں گا. یہی چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ جو پچھلے سال گورنمنٹ نے قانون بنائے تھے کہ جب چاہے پاسپورٹ چھین لو, جب چاہے بوری سیلس کے بارے نکال سکتے ہیں سب کچھ, تو میں یہی آپ سے جو میری اور آپ کی گفتگو ہوئی تھی, میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ عوام کو بتائیں کہ اس سپریم کورٹ کے اس کے بعد تو ہمیں کافی تحفظ مل گیا ہے کہ ہم اب مثلا سی کیٹیگری میں نہیں آتے, بلکہ ہمیں اگر ان کو لے جانا پڑے گا, ہماری نیشنلٹی چھینی پڑے گی, تو اب ہمیں یہ قانونی ایک رستہ تو مل گیا. کیا آپ اگری کرتے ہیں کہ ہمیں قانونی رستہ مل گیا ہے کہ ہم عدالت میں جا سکتے ہیں, ان کو چیلنج کر سکتے ہیں؟
1: ہاں یہ راستہ ہے راجا صاحب. دیکھیں وہ جو دو دو دو علیحدہ چیزیں ہیں, میں آپ کو بتا دوں کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا پاسپورٹ والا قانون, یہ اس وقت بھی ہمیں اندازہ تھا کہ یہ قانون ذرا تھوڑا بہت اسی لیے چینج کیا گیا تھا کہ ان کو پتا تھا یہ ایک دو فیصلے آنے ہیں, اور سپریم کورٹ نے یہ جب فیصلہ پورا آئے گا ہم پڑھیں گے, پھر میں ڈیفینیٹلی دیکھوں گا کہ اس فیصلے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور اس فیصلے کا مطلب کیا ہے اور اس قانون کے ساتھ کیا ہے. دوسرا جو قانون بنایا گیا تھا نا وہ یہ تھا کہ جب آپ کے بچے غلط کام کریں نا بہت, تو آپ کی پوری چھینی جا سکتی ہے. میری انفارمیشن کے بقول اس کا بھی ایک کیس سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے اور اس کا بھی فیصلہ آنے والا ہے. اب جب وہ فیصلہ آئے گا تو پھر پتا چلے گا کہ اس قانون کے اندر کیا ہے. اب میں آپ کو ایک ایک, ایک, ایک بات کر دیتا ہوں, میں نے یہ اللہ کرے کہ کوئی اس بات کو نہ لے, ہمارے آپ کو بھی پتا ہے میں نام نہیں لیتا, مگر ہمارا ایک پاکستانی بھی تھا اس چیز کے اندر انوالو تھا جس کا مقام نے چھیننے کی کوشش کی ہوگی, چاہ صاحب کو آپ کو پتا ہوگا اس کیس کا. تو آپ یہ کیا کہتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی تھا, تو یہ آپ کیا کہتے ہیں یہ دیکھا جائے گا, مگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کلیئر کر دیے کہ پاسپورٹ دے کے چھیننا بڑا مشکل ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اس پہ کیا کہتے ہیں گورنمنٹ انویسٹیگیشن کرے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ میرے فون پہ تیس فور کے پیچھے کے لنکس آنے لگ جاتے ہیں اور وہ تو شروع ہو گئے ہیں نا کہ یہ دیکھو ہم سچے تھے کہ ہم نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. تو اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا نیا جو انٹرکیشن منسٹر ہے موتوز کو اور ہمارا جو نیا جسٹس منسٹر ہے للیگن وامنگ, وہ اس پہ کون سی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس فیصلے کے بعد. میں ان کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ
2: چلے یہ آنے والا وقت بتائے گا. تو شاہ صاحب اجازت لے عدنان سے, پھر اگلے پروگرام کی طرف.
0: عدنان بہت بہت خوشی ہوئی ہے اور امید ہے کہ اگلی دفعہ جب ہماری ملاقات ہو تو ہم تھوڑا سا جو کمیون کا جو कम्यून ज्यादा पावरफुल है या पार्लियामेंट ज्यादा पावरफुल है, किसके पास कैसे अख्तियार आते हैं, और डेनमार्क की जो मुख्तलिफ कम्यून्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। हम सुनना चाहेंगे आपसे, क्योंकि मैं बहुत खुश हूं कि आप और अजीज शान और दूसरे जो बच्चे आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, वो बकायदा तैयारी से आ रहे हैं और आप लोगों के पास इल्म है और आप इल्म बांट रहे हैं और सुनने वालों को एक मुफीद इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्योंकि अब हम बूढ़े हो गए हैं, हमारे हमारी उम्रें इतनी नहीं है कि हम हर रोज बैठ के इसके ऊपर बात करें, तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप अपनी फैमिली अपनी दूसरी जॉब्स को छोड़कर इस पे टाइम देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो आपका दिलो जान से दुआ करता हूँ कि आप सियासत में इसी तरह रहे और लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहे।
1: शुक्रिया आप दोनों का, आप लोगों का, फिर इंशाल्लाह ताला बात होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज सबको।
2: अल्लाह
0: हाफिज।
2: बहुत शुक्रिया शाह साहब, हम शाम के प्रोग्राम में दोबारा चीज को आगे लेकर चलेंगे। आप सब दोनों इजाजत लेते हैं, अब हमारा टाइम हमें इजाजत नहीं दे रहा।
0: जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
2: समय नाज़रीन, आप सुन रहे थे अदनान अली अमीन को, और शाह साहब जो हैं वो सवाल जवाब की महफिल में वो उसको ले रहे थे, अदनान को ले रहे थे। समझना, हमारा किसी से मुतफिक करना जरूरी नहीं है, कोई बात करना चाहता है, कोई अपनी राय देना चाहता है, तो उसके लिए अदारा आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए।
1: बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा,
0: बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा, बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान हो गए।
0: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम।

0: मुहम्मद इश्रम जिंदा हो गए।
1: बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा,
0: बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा, बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान।